वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा हाल।